आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में सुबह के 7 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 7 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: पवन करे शोर।
1: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

इशारा। आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 8 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: जान जा। आई गो आई गो आई गो, ये क्या हो गया तेरे पीछे दिल ये तबाह हो गया। जी में आता है कि तुझे देखूं भी नहीं, पर क्या करूं ये दिल जो फिदा हो गया है, क्या करूं ये दिल जो फिदा हो गया। आई गो आई गो आई गो, ये क्या हो गया।
1: आई गो आई गो आई गो, ये क्या हो गया।
0: आई गो आई गो आई गो, ये क्या हो गया।
1: आई गो आई गो आई गो, ये क्या हो गया।
0: आई गो आई गो आई

0: देना।
1: अरे हे सूरदास का औलाद, तो अगर सुनाई नहीं पड़ा था हम कहा कहा थे, हम कहा ठहरा करने को कहा आगे आ गया।
2: हम ये बकवास सुनने नहीं आए हैं, हम यहाँ के राजा हैं और अब हम लौट कर आए हैं, हम राजा की तरह रहेंगे।
1: अरे हाई देखो इकालिया गैंडा के, राजा की तरह रहेंगे यानी अब हम तो हर प्रजा की तरह रहिए।
0: गोविंदा,
1: अरे गोविंदा नहीं जी, हवलदार बोलिए आप।
0: हवलदार साहब, लगता है दो डंडे देने ही पड़ेंगे।
1: हाँ ऐसा कहा,
3: दे दीजिए।
1: अरे रजवा का औलाद, इन्हें आओ रे, पुलिस का भाका नहीं समझता है क्या रे? हम पुलिस वालन का हंसना मना है, चलिए। अरे बगुआ
0: गोविंदा,
1: और हम तो के हुकुम देते हैं ईद दारू का अड्डा बंद कर दे।
3: मगर दारोगा जी, हम दिन भर तो हर ड्यूटी बजाई मगर रात को ये धंधा
1: बंद। खड़ा करो, बंद। हम कह दिया सो कह दिया, अरे दिन का बात नहीं है, रात का बात नहीं है, शराब पीना बुरी बात है तो शराब बंद का
3: बंद। लेकिन गोविंदा, नहीं नहीं हवलदार, नहीं नहीं नहीं दरोगा साहब, कल तो शिवरात्रि का दिन है।
1: अरे शिवरात्रि के दिन का बात हम कहा कहा थे, अरे कल तो छुट्टी का दिन होते हैं, भांग पिया जाते, का पिया जाते।
4: जो चिराग हमने जलाए वही चिराग हमारा घर जलाने की कोशिश कर रहे हैं।
5: इससे पहले कि चिराग एक भड़कती आग बन जाए, उसे बुझा देना ही शुभ देती है।
4: जरा हम भी तो देखें उनकी लौ में कितनी गर्मी है।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to रेडियो गाना and it's 9 AM in India. Keep listening to रेडियो गाना. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 10 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: अरे मैं क्या एक भूचाल हूँ?
1: भूचाल भी और एक नाजुक ख्याल भी, ये लीजिए
0: मेरे लिए।
1: जी आपकी नजर।

0: फिर न लगा दीजिए।
1: अजी हम तो आपकी नजर के मारे हुए हैं।
0: तो फिर हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं?

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 11 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 12 noon in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: तुम्हारे डैडी की मर्जी के खिलाफ हमारा इस तरह से और मिलना, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता।
1: कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम जैसे मिलते आए हैं मिलते रहेंगे।
0: फिर भी जरूर, आखिर वो तुम्हारे डैडी हैं, तुम्हारे लिए जरूर कुछ और सोच रखा होगा।
1: सोचने दो।
0: बुरा मत मानना जरी, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी उठानी पड़े। और फिर यह भी तो सच है कि मैं एक मामूली घर का लड़का हूँ।
1: फिरोज, तुम मुझे प्यार करते हो?
0: लेकिन जरी, सिर्फ प्यार से तो सब कुछ नहीं होता। तुम बड़े घर की लड़की हो, तुम्हारे डैडी
1: तुम मुझे प्यार करते हो?
0: फिर मेरे कॉलेज का यही आखिरी साल है, बीए के बाद अब पढ़ भी नहीं पाऊंगा, पता नहीं कब कैसी नौकरी मिले। और
1: फिरोज, तुम मुझे प्यार करते हो?
0: प्यार तो करता हूँ जरी, बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन
1: प्यार करते हो ना?
0: पर जरी तुम
2: तुमसे मिला था प्यार, कुछ अच्छे नसीब थे।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to रेडियो गाना and it's 1 PM in India. Keep listening to रेडियो गाना. Thank you.

सो कर लो बात। अरे बाबूजी ऐसी इंग्लिश आवे दैट आई कैन लीव अंग्रेज बिहाइंड। यू सी सर, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन लाफ इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज ए वेरी फनी लैंग्वेज। भैरो बिकम्स बैरन एंड बैरन बिकम्स भैरो बिकॉज दे माइंड द वेरी नैरो।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 2 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 4 PM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

एक दिन ऐसे बीता जैसे उमरिया बीती, सब कुछ भूल जाना आसान है, सब

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 5 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 5 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

साथ में अपनी भी नहीं घरवाली की जय।

देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम पहले तुम पहले तुम पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।

0: आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार बॉलीवुड मिक्स मस्ती शो आरजे अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार थीम चॉइस में सुनिए दिए गए थीम शब्द पर आधारित गाने। आप मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश कर सकते हैं सिर्फ रेडियो हॉटस्टार के ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।
1: नमस्ते नमस्ते नमस्ते, राधे राधे, नमस्ते एंड गुड इवनिंग, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमन, आ चुका हूं लेकर आज का मिक्स मस्ती का मस्ती भरा शो। हर तरह के गाने को एंजॉय करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप मेरे पसंद के गाने को एंजॉय कीजिए। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूंगा, क्या यही कि तेरे नाम से मोहब्बत की है, कि तेरे एहसास से मोहब्बत की है, कि तेरे नाम से मोहब्बत की है, तेरे एहसास से मोहब्बत की है, और तुम मेरे पास नहीं फिर भी तुम्हारी याद से मोहब्बत की है। और कभी तुमने भी मुझे याद किया होगा, कि कभी तुमने भी मुझे याद किया होगा। मैंने हर लम्हा से मोहब्बत की है, और तुमसे मिलना तो एक ख्वाब सा लगता है, कि तुमसे मिलना तो एक ख्वाब सा लगता है। मैंने तुम्हारे इंतजार से मोहब्बत की है। इंजॉय द ट्रैक के कौन

0: ना ही
1: बिल्कुल बहुत अनमोल खजाना हो मेरे लिए। वैसे मेरे पास बहुत से दोस्त जुड़ चुके हैं, सभी का वेलकम करते हैं। सबसे पहले आज जुड़ने वाली है नाहिद अंसारी जी, बहुत बहुत वेलकम है नाहिद अंसारी जी, वालेकुम अस्सलाम। और साथ ही साथ बिट्टू कुमार जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। एमडी हमारे यानी के सरफराज भाई सरसू पटेल जी साउथ अफ्रीका से जुड़ चुके हैं, वालेकुम सलाम, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। अशोक देशमुख जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और प्रियंका जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है प्रियंका जी। साथ ही साथ सर्वजीत सेठी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं इनका भी। और ज्योति खटवटे जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं ज्योति खटवटे जी। और यहाँ पे सुनीता गोप जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है इनका भी। साथ ही साथ मैं बता दूं कि प्रमोद प्यारे प्यारे प्रमोद बगाड़ी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और कायदा झक्का जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। आत्माराम पाटिल जी वेलकम है आपका भी। और मैं बता दूं कि यहाँ संध्या पटेल जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। समुद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और अभिषेक तिवारी जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। संतोष गौंड जी हैं, वेलकम है आपका भी। और गजानन सुलकार जी वेलकम है। जितने भी दोस्त चोरी चोरी चुपके चुपके सुन रहे हैं सभी का वेलकम वेलकम वेलकम। और प्रोग्राम का आगाज करते हैं सबसे पहले प्रियंका जी के गाने के साथ। ये लेकर डिमांड आई है कि तुमसे मिलने को दिल करता है और तुम ही हो जिसपे दिल मरता है। बिल्कुल रुक।

बिल्कुल तुमसे मिलने को दिल करता है, बहुत दिल करता है, बहुत ही दिल करता है। दिगंबर जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं दिगंबर जी आपका भी, और साथ ही साथ जाकिर खान जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम। लिखते हैं कि मेरी हसरतों की दुनिया में आने लगे हो, मेरी

0: बिल्कुल दिल डरता है भाई। और मंगेश देशमुख जी देखते हैं कि मैं भी जुड़ गया हूँ। बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका। और अजय भगत जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और उनके बाद जुड़ चुके हैं योगेंद्र प्रजापति जी, बहुत बहुत वेलकम है योगेंद्र प्रजापति जी। साथ ही साथ संजय जी लिखते हैं वाह क्या चॉइस है, प्रियंका जी थैंक यू सो मच। सैयद जुनू जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। और नाहिद जी लिखते हैं कि तुमसे मिलने को हर पल दिल बेकरार रहता है और तुम्हारी एक झलक का ही इंतजार रहता है, और कश्मीर जाइए दुनिया का हर फासला क्योंकि मेरी हर दुआ में बस तुम्हारा ही नाम रहता है। वाह वाह वाह क्या बात है, गजब। एंड गजन अंजलि लिखते हैं कि मैं भी जुड़ चुका हूँ, वेलकम है। तुमसे मिलने को दिल करता है, लाजवाब गाना सुनने को मिला, मजा आ गया। सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं?
1: जय अमर सर जी, सुसंध्या, नमस्कार, नमस्ते, नमस्ते जी। और तुझसे मिलने का दिल करता है, इतना अच्छा गाना सुनाया, इनको धन्यवाद देते हैं जी।
0: ओके जी, बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद देते हैं। इसलिए अगला गाना मैं प्ले करूंगा कि वो हरे दुपट्टे वाली सीधी साधी भोली भाली, जानम रुक जाना, अरे रुक जाना भाई रुक जाओ। इस गाने को लेके आए हैं यहाँ पे किशन पाल शाक्य जी, सभी को डेडिकेट करना चाहते हैं। सुनवा दे किशन पाल जी, एंजॉय कीजिए।

0: जी जी जी जी और मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आ रहे हैं, शामिल करते हैं। धर्मेंद्र वर्मा जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है धर्मेंद्र वर्मा जी। गजन सरकार जी लिखते हैं कि किशन पाजी जी की पसंद मुझे बहुत पसंद आई, थैंक यू सो मच। और अशोक देशमुख जी लिखते हैं कि किशन पाजी की पसंद मुझे बहुत सुपरहिट लगी है, लाजवाब। एंड सरफराज जी जुड़ चुके हैं बुलंद शहर वाले, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और अमीना खान जी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत वेलकम है। लिखते हैं कि एक आवाज और हजारों मुस्कुराहट। अर्जमन सर जी आज की बॉलीवुड मिक्स मस्ती में शामिल हो गए जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका। अमीना खान जी एंड अजय कुछ जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। राजेश कुमार जी जुड़ चुके हैं, आपका भी वेलकम है। और नाहिद जी लिखते हैं कि जानम रुक जाना, जरा अभी दिल की बात अधूरी है और तेरे साथ बिताने को मेरी हर सांस जरूरी है, दूर मत जाना यूं छोड़कर मेरा हाथ कभी, क्योंकि तेरे बिना मेरी हर खुशी जैसी अधूरी है, बिल्कुल अधूरी है। लेकिन अगला जो मैं गाना प्ले करने वाला हूँ वो भी ते हरी हरी वाला ओढ़नी पड़ी है, जिसे सुनना चाहती है यानी कि कायनाथ जी, तो कायनाथ जी इंजॉय कीजिए इतने प्यारे गाने को, हरी हरी ओढ़नी जी, हरे दुपट्टे वाली हरी हरी ओढ़नी वाली।
1: अरे अरे कहाँ से आवता रुको, अहो दागी कैसन बा, अरे अरे धर सर धर।

वेलकम बैक। और मेरे पास फीडबैक आ चुके हैं, नीरज प्रकाश जी लिखते हैं कि हरे दुपट्टे वाले भी गाना मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। आरिफ सिंधी जी लिखते हैं कि अमन शाह जी असलान को मैं भी जुड़ चुका हूँ गाजनगर गुजरात से, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी आरिफ सिंधी जी। और सर्वजीत जी लिखते हैं कि कार्यक्रम शानदार आगाज हुआ है, ओके थैंक यू सो मच। और नाही जी लिखते हैं कि भोजपुरी गाना बहुत ही लाजवाब लागल, अच्छा सच में कहा। राधाकृष्ण को भी लिखते हैं कि मैं भी जुड़ गया हूँ, बहुत बहुत ही अच्छा गाना सुनने को मिला है, मजा आ गया है। धर्मेंद्र वर्मा जी लिखते हैं कि स्टार मिक्स मस्ती में एक से बढ़कर गाने चल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। इसी बात पे अगला जो पसंद है उसके डिमांड मेरे पास आया हुआ है, किन का है ये, यानी कि परवेज अहमद जी का, परवेज अहमद जी या परवेज आलम जी जो भी है इन्हीं का वो डिमांड है। और ये लिखते हैं दिल दीवाना ढूंढता है एक हंसी लड़की, सच में कहा, ढूंढते रहिए, इंजॉय द ट्रैक।

वेलकम बैक। और मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आ रहे हैं जिसे मैं यहाँ पे संजय पटेल जी लिखते हैं मजा आ गया सुन के एकदम। और गजानंद जी लिखते हैं कि भाई परवेज आलम जी के पसंद मुझे बहुत पसंद है, दिल दीवाना ढूंढता है एक हंसी लड़की। नाहिद जी लिखते हैं कि दिल चाहता है कि बस तेरा ही नाम लिखूं, लिखती है कि दिल चाहता है कि बस तेरा ही नाम लिखूं, हर दुआ में तुझे ही हर शाम लिखूं, अगर मिले इजाजत तेरी मोहब्बत की तो पूरी जिंदगी तेरे नाम लिखूं। वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत ही प्यारा। नंदनी माँ जुड़ चुकी है, बहुत बहुत वेलकम है माँ जी आपका भी। और राधा कृष्ण गो की लिखते हैं कि वाह शानदार पसंद, इस गाने के लिए धन्यवाद देते हैं। और शेख यानी कि ताजिम जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है शेख ताजिम जी। और हमारे प्यारे प्यारे प्यारे प्रमोद बगाड़ जी भी जुड़े हैं, बहुत बहुत वेलकम है। और इन्हीं का गाना मैं प्ले करने वाला हूँ। लिखते हैं कि आदरणीय अमन सर जी को प्यार भरा नमस्कार, अखियों से गोली मारे का गाना सुनना चाहता हूँ मैं, और ये सुनना चाहते हैं ग्राम कोलासर तालुका नंदूरा महाराज से प्यारे प्रमोद बगाड़े, वर्षा बगाड़े, प्रतीक बगाड़े, संकेत बगाड़े जी। तो एंजॉय द ट्रैक प्यारे प्रमोद बगाड़े जी।

0: बिल्कुल लड़की आंखों से मारे गोली। ओके क्या गाना लेके आए हैं हमारे प्यारे प्यारे प्यारे प्रमोद बगाड़े जी और परवेश कुमार जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत वेलकम करते हैं परवेश कुमार जी और ये शैलेश तिवारी जी, क्या करते हैं?
1: हाँ नमस्कार।
0: नमस्कार
1: आरजे अमन सर जी।
0: जी जी बोलिए जी।
1: शुभ संध्या।
0: शुभ संध्या जी।
1: आज बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है।
0: थैंक यू सो मच।
1: भोजपुरी के संग मिक्स चल रहा है, सुनने में मजा आ रहा है, मन गदगद हो गया है।
0: ओके जी धन्यवाद आपका भी। और यहाँ पे अमीना खान जी लिखते हैं जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, मजा आ गया सुन के। और गजानंद जी लिखते हैं कि हमारे दोस्त प्यारे प्रमोद बगाड़े जी के पसंद मुझे बहुत पसंद है, थैंक यू सो मच। और हमारे यहाँ नाहिद जी लिखते हैं कि तुम्हारी मुस्कान में मेरी हर खुशी बसती है, लिखते हैं कि तुम्हारी मुस्कान में मेरी हर खुशी बसती है और तुम्हारी बातों में मेरी हर धड़कन हंसती है और रब से बस यही दुआ है हर जन्म में तुम मिलो क्योंकि तुमसे ही मेरी मोहब्बत और तुमसे मेरी जिंदगी सजती है। वाह क्या बात है, सुपर हिट पसंद करते, थैंक यू सो मच प्यारे प्रमोद बगाड़े जी। और ये क्या कहते हैं सुन लेते हैं इनकी भी।
2: जय अमन सर जी, प्रमोद बगाड़े जी अपने गाने में शामिल किए और सभी भाई और बहन अपने अपने गाने में शामिल करते हैं, सभी को भी धन्यवाद देते हैं।
0: ओके और हमारे प्यारे प्रमोद बगाड़े जी लिखते हैं कि थैंक यू अमन जी आपने मेरा गाना प्ले कर दिया है। और नीलेश विरुकाज लिखते हैं कि हमारे दोस्त प्यारे प्रमोद बगाड़े जी के पसंद मुझे बहुत अच्छी लगी है, थैंक यू सो मच। राधा कृष्ण को लिखते हैं कि बहुत ही सुपर हिट फरमाइश, मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया प्रमोद। और यानी परवेश कुमार जी लिखते हैं कि लाजवाब फरमाइश था, ये बहुत अच्छा लगा है। संध्या पटेल जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा सॉन्ग है जी। इसी बात से अगला जो डिमांड है वो हमारे अजय कुश जी का है। अजय कुश जी भी आते हैं तो हट कर गाना लाते हैं। इंजॉय द ट्रैक अजय कुश जी।

बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे राजीव चौधरी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम। लिखते हैं गजब का सॉन्ग है भाई, मजा आ गया सुनकर प्यारे प्रमोद बगाड़ जी। लिखते हैं कि आदरणीय मित्र अजय कुछ जी की पसंद मुझे बेहतरीन लगी है।

और इसी बात पर जो अगला डिमांड है वो दो दोस्तों की है। हमारे दो दोस्त हैं, वो एक है नाहिद अंसारी जी और दूसरे हैं सैयद यूनुस जी। दोनों की एक ही पसंद है, मिले जो तेरे नैना हमारे नैना से, बिल्कुल जादू चल गया।

0: वेलकम बैक। और मेरे पास फीडबैक आ चुके हैं बहुत सारे। राधा कृष्ण को देखेंगे बहुत ही खूबसूरत गाना, दिल खुश करने वाला। थैंक यू सो मच फॉर दिस सॉन्ग। एंड हमारे प्यारे प्रमोद बयान लिखते हैं कि सही दोनों जी के पसंद मिले जो तेरे नैना मुझे बेहतरीन लगा है। और यहाँ पे नाही जी लिखते हैं कि मिले जो तेरे नैना दिल को करार आ गया, हर अधूरा ख्वाब जैसे साकार हो गया, और तेरी नजरों में ऐसा जादू समाया है कि मेरी हर लम्हा बस तेरा ही इंतजार बन गया। वाह क्या बात है, थैंक यू सो मच मेरा भाई गाना प्ले करने के लिए। जागीर खान लिखते हैं कि मोहब्बत की शाम जला कर तो देखो, दिल की दुनिया सजा कर तो देखो, और तुम्हें ना हो जाए मोहब्बत तो कहना, जरा हमसे नजरें मिलाकर तो देखो। जी जी मिलाइए मिलाइए। और ये क्या कहते हैं,
1: लाजवाब सॉन्ग अमन सर जी, थैंक यू। जिस भाई ने भी रिक्वेस्ट भेजी है उनको भी धन्यवाद।
0: ओके जी, थैंक यू सो मच शैलेश तिवारी जी। आर एफ सिंधी जी लिखते हैं नाही जी की पसंद बहुत ही प्यारी लगी है, थैंक यू सो मच नाही जी, बहुत शुक्रिया। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि लाजवाब फरमाइश जी, बिल्कुल नजरों में तुम। इसी बात पर अगला जो डिमांड है मेरे पास वो अजय भगत जी का है। अजय भगत जी, एंजॉय द ट्रैक फ्रॉम ये दिल आशिका।

0: वेलकम बैक। बिल्कुल, अगर ये प्यार हो जाए तो क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है, और प्यार कभी भी किसी से कहीं भी कभी भी हो सकता है। जी बिल्कुल, हीरामन जी क्या कहते हैं, सुन लेते हैं इनकी भी बातें।
1: नमस्कार आरजे अमन सर जी,
0: गुड इवनिंग।
1: मैं हीरामन खिराड़े वाशिम महाराष्ट्र से इस लाइव कार्यक्रम में मैं भी जुड़ गया हूँ, और अभी अभी जो गीत चल रहा था सैयद इनू जी का, मिलेगे मिले जो तेरे नैना हमारी नैनों से, बहुत ही सुपर से ऊपर फरमाइश सैयद इनू जी, दिल से धन्यवाद इतनी अच्छा गीत सुनवाने के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको। और यहाँ नाजिम जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है नाजिम जी। और सर्वेश भगत क्या कहते हैं, सुन लेते हैं इनकी भी।
2: अरजय अमन सर जी, अजय भगत जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जी।
0: धन्यवाद जी आपका भी। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि ये कौन है, राधा कृष्ण को लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन लाजवाब डिमांड, बहुत अच्छा लगा। नहीं लिखते हैं कि नजर आ रहा है कि तुम प्यार करते हो, बिना कहीं ही हर बार का इकरार करते हो, और छुपा लो लाख अपनी धड़कनों में को, मगर यानी कि तुम तो हर अदा से मोहब्बत का इजहार करते हो। आए है आए है आए है, क्या बात है। और सैयद इनू जी लिखते हैं, थैंक यू आरजे अमन जी मेरा गाना प्ले करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जागीर खान लिखते हैं कि बहुत ही प्यारी पसंद है ये दिल आशिक गाना का, जिसे दिल का दुश्मन समझते थे, मजा आ गया, थैंक यू सो मच मेरे दोस्त। अजय भगत जी लिखते हैं, थैंक यू अमन जी आपने मेरा गाना प्ले कर दिया। और गजानंद जी लिखते हैं कि अजय भगत जी के पसंद मुझे बहुत पसंद आई, थैंक यू सो मच। इसी बात पर अगली जो डिमांड है वो डिम्पी जी का है, और डिम्पी जी है यानी कि प्रियंका जी का बहन, तो बहुत बहुत इंजॉय कीजिए इस गाने को डिम्पी जी।
3: शेखर, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है?
4: हाँ
0: हाँ
4: हाँ, एक लड़की बिल्कुल तुम्हारी जैसी,
0: बिल्कुल तुम्हारी जैसी,
4: बहुत सुंदर,
0: बहुत भोली, बहुत भोली, बहुत प्यारी,
4: और थोड़ी पागल भी। लेकिन मेरे प्यार की खबर सिर्फ मेरे दिल को है।
3: उसे बताया क्यों नहीं?
0: डर लगता है
4: ये प्यार भी अजीब चीज है संजना, जहाँ इकरार की पूरी उम्मीद हो वहाँ भी दिल कहने से डरता है।
0: सही बात है बिल्कुल सही।
4: और मुझे तो इनकार का पूरा यकीन है, तुम ही कहो उसे कैसे बताऊं, वो किसी और को चाहती है,
0: बहुत
4: चाहती है।
0: ओह, ओह।

0: जब किसी
1: तो इसी बात पर बोली देते हैं और ये मैं बोलूंगा अपने जाकिर खान जी के गाने के थ्रू। वैसे पहले फीडबैक शामिल कर लेता हूँ। यहाँ पे किशन बाजी लिखते हैं कि हम जुड़ गए हैं, बहुत बहुत वेलकम है और गाना भी निकल गया आपका। राहित जी लिखते हैं कि जहाँ इकरार की पूरी उम्मीद हो वहीं इनकार की भी डर लगता है। मोहब्बत की राह है आसान कहाँ होती है, हर मुस्कान के पीछे एक इम्तिहान होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि बहुत खूबसूरत फरमाइश, थैंक यू सो मच डिम्पी जी। और अनिल कश्यप जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। लेकिन अगला जो गाना है हमारे जाकिर खान जी की पसंद है, जो मुझे बहुत पसंद है। और जाकिर जी सुनवा रहा हूँ आपकी पसंद के इस गाने को, इंजॉय द ट्रेक। सच में ये गाना मुझे मतलब बहुत पसंद है। और गाने के बोले

0: वेलकम बैक। सच में तू कहबा तो जिए बे राजा, तू कहबा तो हम मर जाम वाला ही गाना। तोहसे कितना प्यार करी ले, तोहके ना अंदाज बा, और तोहरा सिवा हमरा दिल पे केहू के ना राज बा। सच में ये गाना भी बहुत है, मतलब का बोली हम, हमारा समझ में नहीं क्या हुआ। तो वैसे फीडबैक भी बहुत सारे आ चुका बा। नंदिनी मालिक जी हैं कि बहुत ही सुपर सुपर सुपर हिट सॉन्ग है। जी जी जी बिल्कुल। और यहाँ पे ज्योति खटवड़े जी लिखते हैं कि सभी गाने एक से बढ़कर एक चल रहे हैं, सुपर हिट प्रोग्राम चल रहे हैं, थैंक यू सो मच। और रविंदर गोरखपुर जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है रविंदर गोरखपुरी जी। लिखते हैं कि मजा आ गया है और हम भी जुड़ गए हैं, ओके। और दत्ताकरम जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं दत्ता कदम जी आपका भी। और अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि आज तो लगता है कि गर्दा उड़ जाएगा। जी नाइस सॉन्ग सुनने को मिल रहा है, उड़ने वाला है। इतना इतने प्यारे प्यारे दोस्तों ने गाने भेजा है सभी के, हम क्या बताएं। जी फीडबैक
1: आरजे अमान सर जी, जाकिर खान जी अपने गाने में शामिल किए, उनको धन्यवाद देते हैं जी।
0: ओके जी, थैंक यू सो मच। और नंदलाल जी लिखते हैं कि गुड इवनिंग अमन सर जी, मैं भी जुड़ चुका हूँ, नंदलाल यादव गाजीपुर यूपी से, बहुत बहुत वेलकम है। और शेख यानी कि ताजिन जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है, दिल को सुकून देने वाला, थैंक यू सो मच, और बहुत मजा आ रहा है। और नाजिन जी लिखते हैं कि ऑसम सॉन्ग है। जी बिल्कुल। राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि बहुत बुरी गाना, तो जब सुनता हूँ तो मेरा दिल एकदम खुश हो जाता है, धन्यवाद देते हैं। और नाहिद जी लिखते हैं कि वाह वंडरफुल फरमाइश, थैंक यू सो मच। और अमीना खान जी लिखते हैं ये गाना बजा के दिल एकदम खुश कर दी है। जी बिल्कुल। अगला गाना सुनिए जिसे आरजे वंशिका जी लेके आई हुई है, क्या कहती हैं?
2: नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आरजे वंशी कैसे हैं आप?
0: बहुत अच्छे, आप बताइए आप कैसे?
2: मैं भी कार्यक्रम से जुड़ी हुई हूँ और कार्यक्रम बहुत बेहतरीन चल रहा है, डेली सुनती हूँ, बहुत ही प्यारे प्यारे गाने सुनने को मिलते हैं, बस ये है कि फीडबैक नहीं दे पाती मैं।
0: कोई बात नहीं,
2: पर कार्यक्रम बहुत ही बेहतरीन चलता है। और आज के कार्यक्रम में भी मैं गाना सुनना चाहूंगी, फरमाइश लेके आई हूँ आप सभी के लिए। गाने के बोल हैं अगर तुम मिल जाओ, जहर मूवी का गाना है।

0: ये गाना स्पेशली आपको डेडिकेट करती हूँ और सभी लिसनर्स को, सभी आरजे को, आरजे ब्रह्मा जी को, सबको डेडिकेट करती हूँ। और इस गाने में मैंने कुछ नई चीज करी है, यानी कि इसमें मैंने मेल और फीमेल वर्जन दोनों को मिक्स करा है और उसकी जो ऑडियो है, जो नया गाना बना है, वो मैंने आपको भेज दिया है। तो आप वो वाला प्ले कीजिएगा और जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और सभी को डेडिकेट है, स्पेशली आपको डेडिकेट है।
1: थैंक यू सो मच। एंजॉय द ट्रैक आरजे पंचिका जी।

0: दोस्तों आप सोच रहे होंगे इस गाने में यानी कि नया क्या है, तो नया ये है, मैं बताना चाहूंगा आपको, दोनों गाने अलग है, यानी कि यानी मेल ने अलग गाया हुआ है इस गाने को उदित नारायण ने, और फीमेल ने अलग गाया है यानी कि श्रेया घोषाल ने अलग गाया है, लेकिन इन दोनों गाने को अलग अलग था, लेकिन इन्होंने दोनों गानों को एक करके एक नया गाना बनाया इन्होंने, जिसमें मेल और फीमेल दोनों यानी ड्यूट कर दिया इन्होंने। आपकी इस यानी कि टैलेंट को भी सैल्यूट करता हूं मैं आरजे वंशिका जी, सच में ये करना इतना आसान बात नहीं है, बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन आपने कर दिखाया है, इसके लिए तो भाई आप बधाई के पात्र हैं। और यहाँ पे गजानंद जी लिखते हैं कि जाकिर जी की फसल मुझे बहुत बेहतर लगी है, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे से क्या नाम है, संध्या पटेल जी लिखते हैं कि बहुत ही मस्त गाना है। जी बिल्कुल मस्त गाना तो है ही, और ये क्या कहते हैं, सुन लेते हैं इनकी।
1: जय अमन सर जी, आर जे वंशिका जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जी।
0: ओके जी, आपका भी थैंक यू सो मच। और यहाँ पे मंगेश देशमुख जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है मंगेश देशमुख जी। और बता दो अमीना खान जी लिखते हैं कि आर जे वंशिका जी की आवाज की तरह उनकी पसंद भी बहुत प्यारी है। ओके थैंक यू सो मच। और यहाँ पे अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि अमन सर जी जब आप भोजपुरी गाना प्ले कर रहे हैं तब आपके भोजपुरी बोलने का अंदाज बहुत ही मस्त है। अच्छा थैंक यू सो मच, मुझे तो पता ही नहीं है, मैं भी सीख रहा हूँ आरजे सोनी जी से। और मैं बता दूं बहुत जल्दी हो सकता है कि आरजे सोनी जी भी हॉटस्टार पर शो करें, स्पेशल भोजपुरी प्रोग्राम ही लेकर आएंगे वो। और रामकेश जी लिखते हैं कि आरजे वंशिका जी की पसंद मुझे बहुत ही पसंद आई, लाजवाब एकदम। और नाही जी लिखते हैं कि ये तेरे लिए ये जमाना छोड़ देंगे हम, हर रिश्ता हर बहाना छोड़ देंगे हम, बस तू एक बार साथ निभाने का वादा कर कि तेरे लिए सारी दुनिया छोड़ देंगे हम। वाह ब्यूटीफुल चॉइस है आरजे वंशिका जी की। और दत्तक्रम लिखते हैं कि आरजे वंशिका जी गाना मुझे बहुत ही सुपर हिट लगा है। गाना तो सुपर हिट है, लेकिन जो गाने के साथ जो जो काम किया गया वो अच्छा लगा। और यहाँ पे जुड़ चुके हैं पिया जी, बहुत बहुत वेलकम है पिया जी। और सुनील कुमार जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है, लिखते हैं कि हम भी जुड़े हुए हैं जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और राधा कृष्ण को भी आरजे वंशिका जी गाना मुझे बहुत प्यारा लगा है, थैंक यू सो मच। और जाकिर खान जी क्या कहते हैं ये सुन लेते हैं।
2: थैंक यू अमन सर जी मेरी सॉन्ग डिमांड को पूरा करने के लिए, और दोस्तों का शुक्रिया फीडबैक देने के लिए, और जो अभी सॉन्ग आरजे वंशिका मैम का प्ले हो रहा है वह भी मेरा बहुत पसंदीदा सॉन्ग है, अगर तुम मिल जाओ, सच में थैंक यू जी। मैं जाकिर खान, जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश।
0: धन्यवाद जी आपका भी। और यहाँ पे आरिफ सिंधी जी लिखते हैं बहुत बहुत शुक्रिया आरजे वंशिका जी, इतना प्यारा आपने गाना सुनाया, मेल और फीमेल आवाज में दोनों में ज्वाइन करके सुनाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको। और गजानंद जी लिखते हैं कि आदरणीय आरजे वंशिका जी दोनों गानों का आपने एक किया, बहुत ही अच्छा लगा, धन्यवाद देते हैं आपको। और ज्योति खटवड़े जी लिखते हैं कि आरजे वंशिका जी का सॉन्ग सुपर से भी ऊपर है, और थैंक यू सो मच उन्होंने ऐसा करके सुनवाया। इसी बात पर अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूं, अनिल कश्यप जी का, बिल्कुल अब है नींद किसे, अब है चैन कहां भाई।

0: बिल्कुल अब है नींद किसे, अब है चैन कहाँ। वैसे फिर वेग भी आ चुका है। आरजे वंशिका जी लिखते हैं थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए, और रामकेश जी लिखते हैं वाह बहुत ही प्यारा गाना है, थैंक यू सो मच। और नाजिम जी लिखते हैं ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर सुपरहिट, पसंद के लिए धन्यवाद देते हैं अनिल कश्यप जी को। ये फीडबैक सुन लेते हैं।
1: आरजे अमन सर जी नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: और नींद और चैन गायब होने का एक रीजन ये भी है कि गर्मी बहुत ज्यादा है।
0: अच्छा, अच्छा।
1: और आपने मेरा गाना प्ले किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: हाँ क्या करें, उमस भी बहुत ज्यादा हो गया है गर्मी के चलते। और रविंद्र गोरखपुरी जी देते हैं कि सुपर हिट पसंद, मजा आ गया सुन के, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। राधा कृष्ण को देखते हैं कि बहुत ही प्यारी पसंद है। और अरुण मंडल जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। और दत्ता कर्म जी लिखते हैं अनिल कश्यप जी का गाना मुझे बहुत ही प्यारा लगा है, धन्यवाद देते हैं उनको इस गाने के लिए। इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो मैं प्ले करने वाला हूँ सर्वजीत सेठी जी का। सर्वजीत सेठी जी सुनना चाहते हैं दो बोल कह के हम तो हारे हैं, हम तुम्हारे हैं, बिल्कुल भाई तुम्हारे हैं, सिर्फ तुम्हारे हैं, सिर्फ तुम्हारे। एंजॉय द ट्रैक।

बिल्कुल दो बोल कह के हम तो हारे हैं, तुम हमारे हो। और वैसे यहाँ पे प्रमोद यानी कि तायरे जी जुड़ चुके, बहुत बहुत वेलकम है प्रमोद तायरे जी। राम के जी लिखते हैं कि भाई सरोजीत जी के पसंद मुझे बहुत पसंद आई, थैंक यू सो मच। और गजानंद जी लिखते हैं कि सरोजीत सेठी जी का गाना मुझे बहुत ही पसंद आया, थैंक यू सो मच। इसी बात पर अगला जो मैं गाना प्ले करने वाला हूँ वो भी बहुत प्यारा है।

और इस गाने को सुनना चाहते हैं, डिमांड किए हैं अनिल मेहता जी। अनिल मेहता जी एंजॉय द ट्रैक, और क्या कहते हैं जरा ये भी सुन लेते हैं ना, अनिल मेहता जी की ऑडियो।

0: अनिल मेहता जी क्या कहते, सुनते हैं।
1: दिल लगाने की सजा तो न दोगे तुम, ये गाना सुनना है एक रिश्ता फिल्म से।
0: ओके, तो एंजॉय कीजिए, दिल लगाने की सजा तो न दोगे तुम, एंजॉय द ट्रेक।

0: और इसी बात पर अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ वो अनिल कुमार जी का है, लेकिन कुछ फीडबैक भी मेरे पास है, उसको शामिल कर लेता हूँ। बहुत सारे फीडबैक है। जागीर खान लिखते हैं कि अति सुंदर गीत सुनने को मिला, दो बोल कह के हम तो हारे हैं, बिल्कुल हम तुम्हारे हैं भाई। और राधा कृष्ण गौर लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब पसंद, थैंक यू सो मच फॉर दिस सॉन्ग। एंड नंदनी मां लिखती हैं कि बहुत ही प्यारी पसंद है। ओके, अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि ये काफी सुंदर प्रोग्राम चल रहे हो, थैंक यू सो मच जी आपका अनिल कश्यप जी। और ही रामन जी क्या कहते हैं सुनते हैं।
1: दो बोल कह के हम तो हारे हैं, तुम हमारे हैं, हम तुम्हारे हैं, तो हम तुम्हारे हैं। वाह, सुपर से ऊपर फरमाई सर्वजीत सेट्टी जी, दिल से धन्यवाद। मैं हीरामन किराड़े वाशिम महाराष्ट्र से।
0: धन्यवाद जी आपका भी। और यहाँ पे हमारे प्रमोद ताड़े जी लिखते हैं कि सुपर सॉन्ग चल रहे प्रमोद ताड़े जी। ओके, नाजिम जी लिखते हैं कि ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर सुपर हिट पसंद के लिए थैंक यू सो मच। एंड नाहिद अंसारी जी लिखते हैं कि मुझको चाहत में दगा तो ना दोगे तुम, और मेरे भरोसे के यूं तुम सजा तो ना दोगे तुम, मैंने दिल की हर धड़कन तुम्हारे नाम कर दी है, मेरी मोहब्बत को कभी भुला तो ना दोगे तुम, आ रहा है कभी नहीं, बहुत ही प्यारा है। और अमीना खान जी लिखते हैं कि आरजे अमन जी क्या आपको एक नाम जी बताइए नाम बताइए। गजानंद जी लिखते हैं कि अनिल मेहता जी के पसंद मुझे बहुत पसंद है, थैंक यू सो मच। और अशोक देशमुख जी लिखते हैं कि दिल लगाने की सजा तो ना दोगे तुम, अनिल मेहता जी के पसंद बहुत शानदार लगे, थैंक यू सो मच। इसी बात पर

बिल्कुल प्यार इकरार मेरे यार हो गया, बल्ला बल्ला बल्ला तुमसे प्यार हो गया। और अमीना खान जी अच्छा धुरंधर नाम दिया है अपने, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे जितेंद्र जी लिखते हैं कि अर्जामन जी नमस्कार, नमस्कार जी, वेलकम है आपका भी। और अंचल कुमार जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं अंचल कुमार जी। नाजिन जी लिखते हैं कि ऑसम सॉन्ग, थैंक यू सो मच। और गजानंद जी लिखते हैं कि अनिल कुमार जी के पसंद मुझे बहुत पसंद है, थैंक यू सो मच। राधा कृष्ण को लिखते हैं कि बहुत ही प्यारी पसंद है, मजा आ रहा है सुनिए एकदम। और सुनील कुमार लिखते हैं कि अमन जी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए, ओके। और अगला जो पसंद सुनवाना चाहता हूँ मैं वो है किन का, देखता हूँ। ओके, ये पसंद हमारे नीलेश वीरोकार जी का है। नीलेश वीरोकार जी सुनना चाहते हैं फिल्म मुस्कान का वो सुपरहिट गाना वो हो तुम, बिल्कुल वो हो तुम, सिर्फ तुम।

0: बिल्कुल, मैंने जिसको दिल ये दिया है, मैंने जिसको प्यार किया है, वो सिर्फ तुम, सिर्फ तुम, सिर्फ तुम। मीना खान जी लिखते हैं कि यस ओके जी। और यहाँ पे आत्मराम जी लिखते हैं कि राजा और रंग का नहीं थी ये तो, मतलब ये निकम, ये गाना मतलब इन मुस्कान का है ना। और यहाँ पे लिखते हैं एमडी नाजिम जी के, बहुत ही शानदार, मेरा फेवरेट गाना है। गजानंद जी लिखते हैं कि दोस्त नीलेश मिरोगार जी के पसंद, मुझे बहुत पसंद है, मुस्कान फिल्म का शानदार गाना सुनने को मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उनको इस गाने के लिए। और ये फीडबैक,
1: धन्यवाद अमन सर जी, आपने मेरा गीत चलाया और जिन्होंने मेरे गाने पर फीडबैक दिया उनका भी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम बहुत ही सुपर हिट चल रहा है,
0: थैंक यू सो मच।
1: तो सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार, तो सबको दीवाना बना दे। मैं सरबजीत सेठी फाजिलका पंजाब से।
0: ओके जी। और यहाँ पे नाही जी लिखती हैं कि तेरे साथ खामोशियां भी गजल बन जाती है और तेरी एक नजर से दुआएं भी मुकम्मल हो जाती हैं। मोहब्बत लफ्जों की मोहताज नहीं होती है क्योंकि तू पास हो तो धड़कने भी इबादत बन जाती है। आए है क्या बात है, कहाँ से ला रही है ये सब लाइनें। राधा कृष्ण को भी देते हैं बहुत ही बेहतरीन फरमाइश, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए। और हीरा मन जी क्या कहते हैं,
2: मैंने जिसको दिल ये दिया है, मैंने जिसको प्यार किया है, ओहो तुम, ओहो तुम, ओहो तुम, ओहो तुम। बहुत ही सुपर से ऊपर फरमाइश नीलेश विरोकार जी, दिल से धन्यवाद। मैं हीरामन खिराड़े वाशिम महाराष्ट्र से।
0: ओके, धन्यवाद देते हैं आपको भी। और रविंद्र गोरखपुर जी लेते हैं मस्त गाना, लवली सॉन्ग, मजा आ गया सुन के। और बीके पंच लेते हैं सर जी, बहुत ही सुपर हिट फरमाइश है, वो हो तुम। बिल्कुल, कुंदा जी लिखते हैं कि हम भी जुड़ गए, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि यहाँ पे नीरज जी की पसंद सुपर डुपर हिट लगी है। और इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो मैं प्ले करने वाला हूँ हमारे आरिफ सिंधी जी की। आरिफ सिंधी जी आज क्या सुनना चाहते हैं जरा सुन लेते हैं, इनका ऑडियो भी आया हुआ है मेरे ख्याल से। ऑडियो आरिफ सिंधी जी, हाँ।
3: अस्सलामु अलैकुम अमन सर जी, मैं आरिफ सिंधी गुजरात गांधीनगर से। आज के गाने के बोल रहेंगे, मैं चाहता हूँ तुझको दिलो जान की तरह, तू छा गई है मुझ पे आसमान की तरह। फिल्म का नाम है प्यार जिंदगी है, गायक है अभिजीत भट्टाचार्य जी और अलका याग्निक जी। डेडिकेट रहेगा अमन सर जी आपको,
0: थैंक यू,
3: आपकी सुंदरता की मूरत जी को, परमार सर जी को, वंशिका जी को और रेडियो हॉट स्टार के सभी श्रोताओं को।
0: ओके,
3: मैं आरिफ सिंधी गुजरात गांधीनगर से,
0: एंजॉय कीजिए,
3: शुक्रिया
0: आरिफ सिंधी जी। बहुत ही प्यारी फरमाइश, लाजवाब डिमांड, थैंक यू सो मच आरिफ सिंधी जी। और भाई प्रमोद जी, वो नेक्स्ट गाना आपका रहेगा।

0: वेलकम बैक और फीडबैक भी बहुत सारे आए हुए मेरे पास। गजानंद जी लिखते हैं आरिफ सिंधी जी की पसंद मुझे बहुत पसंद है, थैंक यू सो मच आरिफ सिंधी जी। और मीना इब्राहिम जी लिखते हैं वाओ नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम सभी दोस्तों को, मैं भी जुड़ गई, बहुत बहुत वेलकम है यूएस से मीना जी। और अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि सुपर सॉन्ग है जी, थैंक यू सो मच। और नाहिद जी लिखते हैं कि मैं चाहता हूँ तुझको दिलो जान की तरह रहूंगा हमेशा अपनी पहचान की तरह, और तू साथ रहे तो हर खुशी मुकम्मल लगे, चाहूंगा तुझे उम्र भर अपनी सांसों की तरह, वाह। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि आरिफ सिंधी जी की पसंद मुझे बहुत पसंद आई, थैंक यू सो मच। और मोहन भाई लिखते हैं कि हम भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और जुड़ चुके हमसे एस खानम जी, पहली बार जुड़ी है, बहुत बहुत वेलकम है एस खानम जी। लिखते हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग है तो बहुत बहुत वेलकम है रेडियो हॉट स्टार में। नाजिम जी लिखते हैं ऑसम सॉन्ग है बिल्कुल। और राधा कृष्ण को लिखते हैं कि बहुत ही सुपरहिट फरमाइश है जी। और मयंक भगत जी लिखते हैं कि अमन जी सभी का सुपरहिट सॉन्ग चल रहा है, बहुत मजा आ रहा है। और अमीना खान जी लिखते हैं कि जी मुझे मीनिंग भी पता है, मैं आपको बताता हूँ क्या मीनिंग है इसका, और थैंक यू सो मच। और ये क्या कहते हैं,
1: पूजती हूँ तुझको भगवान की तरह, वाह क्या लाइन है। और सच में इंसान को थोड़ा सा उस लेवल पे जीना भी चाहिए कि सारे लोग खुश रहें मस्त रहें, बहुत बढ़िया गाना, बहुत बढ़िया फरमाइश,
0: थैंक यू सो मच अनिल कश्यप जी। आरिफ सिंधी जी लिखते हैं बहुत बहुत शुक्रिया अमन जी मेरा फरमाइश को प्ले करने के लिए, दोस्तों का भी धन्यवाद देते हैं फीडबैक देने के लिए। कुंता जी लिखते हैं कि आरिफ सिंधी जी की पसंद मुझे बहुत पसंद है, सुपर सुपर लाजवाब डिमांड के लिए थैंक यू सो मच। इसी बात का अगला जो डिमांड है वो हमारे प्रमोद कुमार जी का है, और सभी दोस्तों को ये गाना डेडिकेट कर रहे हैं, सुना दिया प्रमोद जी, एंजॉय द ट्रैक।

0: वेलकम बैक और फीडबैक भी मेरे पास आए हुए हैं। और अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि सुपर हिट सॉन्ग जी। मीना जी लिखते हैं बहुत ही खूबसूरत पसंद है, थैंक यू सो मच प्रमोद कुमार जी। अमीना खान जी लिखते हैं कि ओके जी। और यहाँ पे अगला जो गाना मैं प्ले करने वाला, अमीना खान जी का ही मैं प्ले करने वाला हूँ, लेकिन दिगंबर जी का पहले फीडबैक।
1: वाह, हमारे प्रमोद भाई साहब की फरमाइश एकदम सुपर दोस्त, सुनकर आनंद ही आ गया, लाजवाब सॉन्ग।
0: ओके जी, धन्यवाद देते हैं। तो सुनवाते हैं अमीना खान जी के पसंद, मैंने जिसको चाहा मिल गया। ओके

0: जैसी है तेरी उठती झुकती ये कातिल निगाहें सिखाने लगी आशिकी।
1: ओहो

ओके जी, मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आए हुए हैं, शामिल करता हूँ मैं। और सबसे पहला तो यहाँ पे राधा कृष्ण गोपी लिखते हैं, बहुत ही शानदार डिमांड, थैंक यू सो मच अमीना खान। एंड यहाँ पे प्रमोद कुमार लिखते हैं कि थैंक यू सो मच अमन जी हमारी फरमाइश को प्ले करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं दोस्तों का भी फीडबैक देने के लिए। कुंता बहनी लिखते हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल डिमांड इन प्रमोद जी का और अमीना खान जी का, थैंक यू सो मच फॉर दिस सॉन्ग। एंड हरीश चंद लिखते हैं कि बहुत बहुत बहुत लाजवाब सॉन्ग, थैंक यू सो मच अमीना खान जी। लाहिद जी लिखते हैं कि तेरी हर अदा मेरे दिल को करती है पागल, और तेरी हर मुस्कान बना देती है मुझे घायल, जब भी तेरा ख्याल मेरे दिल से उतरता है मेरा हर पल बस तुझे मिलने को मचलता है। ओहो क्या बात है, इसी बात का अगला जो गाना मैं प्ले करने वाला हूँ वो ये सुभाष तिवारी जी का। सुभाष तिवारी जी सुनना चाहते हैं हम ही पिया जी के पास।

वेलकम बैक। और मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आए हुए हैं। कपूर चंद जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। कपूर चंद जी और गजान जी लिखते हैं, अमीना खान जी के पसंद मुझे बहुत बेहतरीन लगे। थैंक यू सो मच अमीना खान जी। एंड मीना जी लिखते हैं, वाह क्या बात है, क्या लाजवाब पसंद सुनने को मिल रहा है। जितेंद्र जी लिखते हैं कि भोजपुरी गाना सुनकर तो दिल गदगद हो गया। अच्छा सच में का नाजिन दिल लिखते हैं कि ऑसम सॉन्ग है। और नाहिद जी लिखती हैं कि वाह एकदम झक्कास फरमाइश, लाजवाब फरमाइश, मजा आ गया सुनकर। एंड काजल झक्कास जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार फरमाइश जी। और अगली जो फरमाइश है वह काजल झक्कास जी लिखते हैं कि नमस्ते गुड इवनिंग सभी दोस्तों को, नमस्ते गुड इवनिंग, मैं काजल सीतामढ़ी बिहार से और सुनना चाहती हूँ एक गाना, सभी दोस्तों को डेडिकेट करना चाहती हूँ तो, और स्पेशली डेडिकेट हमारे मिठू मिया जी को डेडिकेट है, तो सुनवा दिया, इंजॉय कीजिए, टोना ना लगे हमारा सोना के।

0: बिल्कुल टोना ना लगी जी, टेंशन मतलब काजल काजी अनिल कैसे बुझी लगते हैं कि आप सर आप बहुत एनर्जेटिक लग रहे हैं भोजपुरी में। अच्छा सच में कहा, कोई बात है तो क्या अगर तो नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं सही करता हूँ शो। और यहाँ पे अमीना खान जी लिखते हैं कि सभी दोस्तों को फीडबैक देने के लिए थैंक यू सो मच मेरे गाने को पसंद करने के लिए। और कुंता बेनी लिखते हैं कि लाजवाब फरमाइश काजल झा काजी, थैंक यू सो मच आपका भी। और मीना जी लिखते हैं वाह वाह वाह ये कितना खूबसूरत नगमा है, थैंक यू सो मच दिल से। और एस खानम जी लिखते हैं कि नाइस द भोजपुरी सॉन्ग जी, थैंक यू सो मच आपका भी एस खानम जी। और एस खानम बोले तो क्या फुल नाम है जरा बता देंगे अगर पॉसिबल हो तो। मंगेश देशमुख जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार फरमाइश चल रही है, थैंक यू सो मच। आफ्ताब आलम जी जुड़ चुके हैं, वालेकुम असलम आफ्ताब आलम जी, और लिखते हैं कि प्रोग्राम बहुत मस्त शानदार चल रहा है, मेरी भी हाजिरी लगा जी, लगा दिया आपकी हाजिरी, वेलकम है आपका बहुत बहुत। वैसे अगला जो डिमांड है वो किनका है जरा सा मुझे देखना पड़ेगा, दिगंबर सिंह जी का। ओके दिगंबर जी क्या कहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं जरा सा सुनते हैं ना दिगंबर सिंह जी का।
1: हेलो अमन सर जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर, संध्या
0: जी जी।
1: तो यार आज हम बॉलीवुड मिक्स मस्ती में एक सॉन्ग सुनना चाहते हैं।
0: ओके
1: तो मूवी का नाम है प्यार के काबिल।
0: अच्छा अच्छा
1: तो सॉन्ग के बोल हैं, तेरे जैसा मुखड़ा तो
0: अच्छा
1: पहले नहीं देखा मैंने, सारी दुनिया देखी मैंने हो।
0: ओहो, क्या बात है।
1: तेरे जैसा मुखड़ा तो पहले कभी देखा नहीं, सारी दुनिया देखी मैंने हो, ओ तेरे जैसा।
0: अच्छा
1: ये सॉन्ग सुनना चाहता हूँ अमन सर जी, तो सुनवा दीजिएगा, धन्यवाद।
0: सुनवा दिया दिगंबर जी, एंजॉय कीजिए अपने गाने।

बिल्कुल तेरे जैसा, तेरे जैसा, तेरे जैसा, सिर्फ तेरे जैसा। और फीडबैक भी आए हुए मेरे पास बहुत सारा। और यहाँ पे यहाँ संध्या पटेल जी लिखते हैं कि नजर को नजर की नजर ना लगे। अच्छा, लिखते हैं कि नजर को नजर की नजर ना लगे, अच्छा भी इस कदर ना लगे कि तुझे देखा है उस नजर से जिस नजर से तुझे नजर ना लगे। आए हाय, अमेजिंग पर्सन, थैंक यू सो मच। और इस कलम की लिखते हैं कि ओके नो, बिल्कुल नो प्रॉब्लम, हमें ऐसे ही काम मैं चलाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। मीना जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार गाना है, थैंक यू सो मच। और अनिल कश्यप जी लिखते हैं वाह क्या आवाज है, मस्त गाना है। और नाई जी लिखते हैं कि तुझसे मोहब्बत मेरी कोई किस्सा नहीं है, ये मेरी रूह की सबसे हसीन दुआ है, अगर लिखी जाए तो मेरी कोई जिंदगी की किताब, तो हर पन्ने में सिर्फ तेरा ही नाम लिखा है। वाह क्या बात है, कभी कभी कोई लाइनें नहीं मिल रही, लेकिन आपकी शायरी अच्छी होती है। फिलहाल अगला जो डिमांड है वो मैं प्ले करने वाला हूँ। और अगला डिमांड हमारे मीना इब्राहिम जी की है, जो उसे भेजी है यूएस से, सुनना चाहती है तू सोनू निगम की आवाज में, ये लाजवाब गाना। और ये एंजॉय कीजिए मीना इब्राहिम।

नमस्कार जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका। अभी अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि अगर कोई क्या लिखते हैं, देखना पड़ेगा। अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि अगर कोई छोड़कर खुश है तो शिकायत कैसी, और अगर अगर उसे खुशी भी ना देखे तो ये मोहब्बत कैसी। जी बिल्कुल। और काजल झक्काज जी लिखते हैं कि थैंक यू गाना बजा देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभी दोस्तों का फीडबैक देने के लिए। और ओके, और इसके बाद एमडी नाजिन जी लिखते हैं कि बहुत ऑसम सॉन्ग है, थैंक यू सो मच। आत्माराम जी लिखते हैं कि अमन सर जी ये मस्ती वाला प्रोग्राम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं, सभी गाने बहुत अच्छे लग रहे हैं। और प्रमोद टायर जी लिखते हैं कि ये निकी मीना जी के पसंद मुझे बहुत ही पसंद है, सुपर से ऊपर है। अमीना खान जी लिखते हैं कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। और आपका और इस काम ओके ठीक है। और यहाँ पे मीना जी लिखते हैं कि मेरे रिक्वेस्ट को प्ले करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बात पर अगला जो मैं प्ले करने वाला हूँ ट्रैक, वो बहुत ही प्यारा है, और जिसे ले हुए एमडी नाजिम जी। नाजिम जी इंजॉय द ट्रैक। सभी को

0: खुदाया खैर, बिल्कुल खुदाया खैर। वैसे फीडबैक भी मेरे पास आया हुआ है। दिगंबर जी क्या कहते हैं, सुन लेते हैं इनकी इनकी पहले।
1: अमन सर जी, हमारा सॉन्ग प्ले किया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
0: ओके जी, आपका भी। और मयंक भगत जी क्या कहते हैं?
2: अमन जी, अभी की सभी गाना सुपर हिट है।
0: ओके, थैंक यू सो मच मयंक भगत जी। और अमीना खान जी लिखते हैं कि यह है नाम जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बता दीजिए, मैं तो जानना चाहता हूँ। ओके, दत्ता जी लिखते हैं कि अमरीन आजम जी का गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है। और आफ्ताब जी लिखते हैं कि अच्छा, ओके, आपको वहाँ भेजना होगा सॉन्ग रिक्वेस्ट के माध्यम से, मैं कोशिश करूंगा। मीना जी लिखते हैं कि वाह क्या बात है, बहुत ही शानदार पसंद है, थैंक यू सो मच फॉर दिस सॉन्ग। ओके जी, और ये गाना पहली बार सुनी है। कुंता भी लिखते हैं कि दिगंबर जी की पसंद मुझे बहुत पसंद है, और नाजिम जी की पसंद, मीना जी की पसंद, सभी की पसंद बहुत ही शानदार लगी है, थैंक यू सो मच। नीलेश विरोका जी लिखते हैं सुपर हिट गाना है, बिल्कुल। और नाहिद जी लिखते हैं कि नाजिम जी की पसंद मुझे सुपर हिट, अमेजिंग, थैंक यू सो मच नाजिम जी। नाजिम जी लिखते हैं थैंक यू सो मच अमन जी मेरा गाना प्ले करने के लिए। रविंद्र गोरखपुरी जी लिखते हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग है, मजा आ गया सुन के आज के सभी गाने। और शमशाद हुसैन जी जुड़ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम। और अच्छा, और जुड़ चुके हैं यहाँ पे, नाम है उनका शाकिर अली जी, तो बहुत बहुत वेलकम है शाकिर अली जी आपका भी। रवि मोहड़े जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है रवि मोहड़े जी। ओके, इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो ज्योति खटवड़े जी का है। ज्योति खटवड़े जी सभी दोस्तों को डेडिकेट करना चाहती हैं, इंजॉय द ट्रैक ज्योति खटवड़े जी।

0: गुलाबी साड़ी।
1: और जुड़ चुकी हमसे यहाँ पे निक्की जी भी, बहुत बहुत वेलकम है निक्की जी आपका भी। और ये क्या कहते हैं सुनते हैं
2: आनंद जी।
1: जी जी
2: मैं कुमार, मेरा गाना कब प्ले होगा?
1: अच्छा जी, आपका भी प्ले हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। जितेंद्र जी लेते हैं कि बहुत ही बेहतरीन फरमाइश है। और ओके, अगला जो गाना मैं प्ले करता हूँ, जल्दी इसी बात पर भाई, यानी कि मयंक बाबू का गाना मैं प्ले करता हूँ। मयंक जी एंजॉय कीजिए।

सर जी सभी फरमाइश शानदार चल रहे, थैंक यू सो मच। लाजवाब हैं। और नाहिद जी लिखते हैं कि सुपर फरमाइश ज्योति खटवड़ जी का बहुत अच्छा लगा। कुंता जी लिखते हैं ज्योति जी और मयंक बाबू की पसंद सुपर हिट लाजवाब लगा, थैंक यू सो मच। और अमीना खान जी वाह क्या गात है, नहीं बिल्कुल बहुत अच्छा है। और यहाँ पे अनिल कश्यप जी लिखते हैं और सॉन्ग डिमांड सो वेल। अच्छा जी अगली जो डिमांड आए हुए हमारे पास वो है ये बिंदिया जी का, बिंदिया जी सुनना चाहती हैं भोजपुरी गाना, सुनवा दे बिंदिया जी।

0: अब जानवर तो जाने नु काम करे के हम हमार जान हो वैसे फीडबैक मेरे पास आ चुका है बहुत सारे दोस्तों का और मैं भगत जी क्या कहते हैं सुनते हैं
1: अमन जी थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए
0: वेलकम जी मयंक जी और यहाँ पे अंदरी मालिक थे कि भोजपुरी गाना बहुत ही निक लागल बउआ अच्छा थैंक यू सो मच अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड भोजपुरी सॉन्ग अच्छा और यहाँ पे शमशाद हुसैन जी लिखते हैं कि ये भाई क्या बजा दिया दिल खुश हो गया सुन के वाह थैंक यू सो मच इसी बात एक और सुनिए जिसे यानी के सुनाना चाहती है सुनीता गोप जी और सुनीता गोप जी का जो फरमाइश आता है आज के दिन भोजपुर ही आता है चाहे वो चाहे मतलब कुछ भी हो तो इंजॉय कीजिए सुनीता गोप जी इस गाने को और सुनीता गोप लाती है तो अच्छा गाना ही लाती है भोजपुरी का

अजना जी दूर कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि भले इसी बात पर चलो एक बार फिर से अजनबी हम बन जाते हैं और गाना प्ले करते हैं आरजे सोनी जी का। लेकिन पहले फीडबैक जितेंद्र जी लेते हैं कि बहुत ही शानदार प्रसंग चल रहा है सर, यहाँ सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और किशन पाली

क्या पसंद है। थैंक यू सो मच इस गाने के लिए भी। और कुंता जी के बहुत बहुत ही प्यारी पसंद, बिंदिया जी और सुनीता गोप जी की पसंद, दोनों की पसंद मुझे बहुत प्यारी लगी है। आर्य संजीत जी के प्रोग्राम तो हमेशा की तरह लाजवाब चल रहा है। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत पसंद आया है। और ओके, और यहाँ पे संजय पटेल जी लिखते हैं कि वाह सुपर सॉन्ग सुनकर मजा आ गया। हमारी ये नंदनी माँ लिखते हैं कि ये भी गाना बहुत पसंद आया, बहुत सुंदर पसंद है। रविंद्र गोरीपुरी जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारी पसंद है, थैंक यू सो मच। तो इसी बात पर आरजे सोनी जी इंजॉय द ट्रैक कि चलो एक बार फिर से अजनबी हम बन जाए दोनों, इंजॉय।

0: वेलकम बैक और फीडबैक भी मेरे पास बहुत सारे आए हुए हैं। हरीश सिंह जी लिखते हैं कि आरजे सोनी जी की पसंद मुझे बहुत प्यारी लगी, शानदार ये डिमांड के लिए उनको बहुत बहुत शुक्रिया। ओके थैंक यू सो मच। और आपका मीना जी लिखते हैं वाह रियली वर्ल्ड इज गोल्ड, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आरजे सोनी जी। यहाँ पे शिल्पा बेन जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। शिल्पा बेन जी लिखते हैं कि वर्ल्ड इज गोल्ड सुपर सॉन्ग, जी बिल्कुल सुपर सॉन्ग तो ये है, मानना पड़ेगा। और इस गाने में टान भी बहुत ज्यादा है। यहाँ लिखते हैं एस खानम जी लिखते हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है और आइडिया भी बहुत अच्छा है। अच्छा ओके थैंक यू सो मच। यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे ना हमारी नंदनी माँ लिखते हैं कि ये सोनी जी की पसंद मुझे बहुत ही पसंद है, इस गाने को सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आरजे सोनी जी। नाहिद जी लिखते हैं कि जमाने इस भीड़ में खुद को तन्हा पाते थे हम, और तुम मिले तो जैसे जिंदगी जीने की वजह मिल गई, अब ना किसी और की तमन्ना है और ना किसी का ख्याल, और तुम्हारी इन आंखों में मुझे ही मेरी पूरी कायनात मिल गई। ओहो क्या बात है कायनात। और यहाँ पे निकुंता बेनी जी लिखते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड बहुत ही ब्यूटीफुल, इस डिमांड के लिए आरजे सोनी जी को मेनी मेनी थैंक यू सो मच, इतना बेहतरीन सॉन्ग सुनवाने के लिए। और रविंद्र गोरखपुरी जी लिखते हैं कि ग्रेट सॉन्ग, ग्रेट ओल्ड इज गोल्ड मेलोडियस सॉन्ग के लिए थैंक यू सो मच। एंड गजानन जी लिखते हैं कि आरजे सोनी जी की पसंद और सुनीता गोप जी की पसंद मुझे बहुत अच्छी लगी, थैंक यू सो मच। और शमशाद हुसैन जी लिखते हैं कि दिलों में फासले रख कर भी हम कभी जुदा ना हो सके, लिखते हैं कि दिलों में फासले रख कर भी हम कभी जुदा ना हो सके, अजीब कश्मकश है हम उनके ही होकर भी उनके ना हो सके, और वो जो एक उम्र गुजरी थी, वो जो एक हमने उम्र गुजारी थी हमने साथ साथ, उसे भूल कर भी हम कभी यादों को मिटा ना सके, ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनने को मिला है, थैंक यू सो मच आरजे सोनी जी। और ये फीडबैक,
1: सन 2008 में आई मूवी काहे गए परदेश पिया से जो गाना चला था हमसे दूर मत जाइयो, काफ़ी सुंदर गाना था, और साथ ही आरजे सोनी जी का भी जो गाना है काफ़ी अच्छा है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो फिर से अलग होने की बात क्यों कर रही हैं।
0: अच्छा
1: जरा पूछिएगा आप,
0: अब तो आपने पूछ ही लिया, अब जवाब उनका आ जाए तब ना। और यहाँ पे सुनीता गोप जी लिखते हैं बहुत बहुत धन्यवाद मेरा गाना प्ले करने के लिए। नीलेश विलोकार जी लिखते हैं कि बहुत ही वर्ल्ड इज गोल्ड सुपरहिट पसंद सुनने को मिला है। जितेंद्र जी लिखते हैं कि ये तो गाना मुझे बहुत पसंद है, थैंक यू सो मच। इसी बात पर अगला जो गाना मैं प्ले करने वाला हूँ वो है हमारे किन की पसंद, विष्णु चंद्र जी की। तो विष्णु चंद्र जी, इंजॉय द ट्रैक के प्यार काहे बनाया राम ने, कोई आएगा

बिल्कुल दिल थाम ले। और यहाँ आरजे सोनी जी लिखते हैं कि सबसे पहले थैंक यू सो मच मेरा गाने को प्ले करने के लिए, और लिखती हैं कि मेरे तरफ से सभी दोस्तों को भी थैंक यू सो मच, सभी ने मेरे गाने को पसंद किया और अपना अपना प्यारा प्यारा फीडबैक दिया। और लिखती हैं कि जब किसी रिश्ते को झेलने में की नौबत आ जाए तो अजनबी बनना ही बेहतर डिसीजन होता है। अच्छा जी, ये बात है, कुछ समझ गए। और वैसे मैं बता दूँ, अगली जो डिमांड है

और यहाँ पे पहले फीडबैक शामिल कर लेता हूँ मैं, उसके बाद से मैं डिमांड की तरफ बढ़ूंगा। और कप्पू चंद जी लिखते हैं कि आप तो देर से भेजते हैं भाई, मैं क्या करूँ, ये जो स्टार्टिंग में गाना प्ले होने वाला है आप बाद में भेजते हैं तो मैं कैसे प्ले करूँगा। हीरामन जी लिखते हैं कि नहीं अभी नहीं हुआ है, अभी आपका तो बाकी है। और दत्ता जी लिखते हैं कि विष्णु चंद जी का गाना मुझे बहुत ही पसंद आया है। गजानंद जी लिखते हैं कि ये फिल्म मैंने सूर्या का लाजवाब गाना सुनने को मिला, मजा आ गया। संध्या पटेल लिखते हैं सुपर सुपर नाइस सॉन्ग है। और मीना जी लिखते हैं बहुत ही खूबसूरत पसंद के लिए थैंक यू सो मच। और शमशाद हुसैन जी लिखते हैं कि नज़र से अपनी वो दिल में उतर जाते हैं, जब वो मुस्कुराते हैं तो दिन सवर जाते हैं, मोहब्बत में उनकी कुछ ऐसा ऐसा है, वो पास ना हो तो हमें बिखर जाते हैं, एकदम झक्का सॉन्ग जी बिल्कुल। और रविंद्र गोरखपुरी लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब गाना है। ओके अगली जो डिमांड है ये मैं प्ले करने वाला हूँ, इनका नाम है MD यानी कि जमीरुल जी। तो भाई जमीरुल जी एंजॉय कीजिए बलम केसरिया।

और इसी बात पर मैं गाना जो अगला प्ले करने वाला हूँ वो सुनील कोंडे जी का है, और सुनील कोंडे जी का गाना प्ले करेंगे, उसके बाद फीडबैक शामिल करेंगे। तो फिलहाल सुनील कोंडे जी एंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: वेलकम बैक, फीडबैक भी आ गया है मेरे पास यहाँ पे। कहा जाना लिखते की वो बलम केसरी वाला गाना मुझे बहुत पसंद आया, थैंक यू सो मच। और दिगंबर जी क्या कहते हैं सुनते हैं।
1: वाह वाह लाजवाब, सुपर सर, सुनकर आनंद ही आ रहा है हमारे दोस्तों फरमा से।
0: धन्यवाद देते हैं आपको भी। और शमशाद हुसैन जी लिखते दिल के जख्मों को हवा दे गए, वो जाते जाते रोने की सजा दे गए, और खुशियां वो खुशियां सब ले गए अपनी महफिल में, और हमारे हिस्से में बस गम पे इंतहा दे गए। गजब का संग सुनने को मिला, थैंक यू सो मच। और मंगेश देशमुख जी लिखते हैं कि सभी दोस्तों की पसंद मुझे बहुत पसंद आ रही है। नाही जी लिखते हैं कि बरसते हैं वो इस कदर बादल आसमां से कि जैसे सदियों की ये प्यास बुझाने आए हो, और एक तुम हो जो बरसते हो मेरी रूह पर इस कदर जैसे धड़कन बनकर मेरी जिंदगी में के सामने आए हो। वाह। और मीना जी लिखते हैं वाह बहुत ही प्यारा गाना है जी, बिल्कुल। और कुंता बेनी लिखते हैं कि सभी दोस्तों की फरमाइश सुपर से ऊपर चल रही है। रविंद्र गोरखपुरी जी लिखते हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है, मस्त गाना है, मजा आ गया।

0: सर, धन्यवाद,
1: बिल्कुल सुनवाएंगे। और चूंकि अभी इसी गाने में हमारे शामिल है सर्वेश भगत जी, इनकी भी सुन लेते हैं ऑडियो को।
2: जय अमन सर जी, सुसंध्या, नमस्कार, नमस्ते जी। आज हमारा फरमाइश का फिल्म है बोल रहा था बोल, और गाने का बोल है हवा सर्द है खिड़की बंद कर लो। हॉट स्टार जो सबको दीवाना बना दे, सभी बड़े को प्रणाम, सभी छोटों को आशीर्वाद। हम सर्वेश भगत जिला वैशाली बिहार से बोल रहे हैं। हमारा परिवार सतीश भगत, हेमंत भगत, पर्ष किशोर भगत, आनंद शेखर, कुमारी सूरज कुमार, मनोज जायसवाल, अशोक देशमुख भाई जी, आत्माराम पाटिल जी, आर जे अमन सर जी, सुंदर ताकी मुरत जी, आर जे रत्ना जी, आर जे वंशिका जी, आर जे एम एस परमार जी, और सभी आर जे, आर सभी भाई, आर सभी बहन, और सभी लिसनर इसमें शामिल, सभी को सुना दीजिएगा। जय राम जी अमन सर जी।

0: बिल्कुल बंद कमरे में चाहत बुलंद कर इसहाक हुसैन जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत वेलकम है, वालेकुम सलाम भाईजान। और यहाँ पे शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि टिप टप बरसा वाला पानी गाना मुझे एक्सीलेंट लगा है। और अजय कुछ लिखते हैं आपका हो चुका है, बहुत पहले का हो चुका है, कहाँ थे आप। मीरा जी लिखते हैं कि मीरा जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार बेमिसाल लाजवाब सॉन्ग है। संसाद हुसैन लिखते हैं कि नजरों से वो कत्ल करना तो तुम्हारी पुरानी आदत है, हम भी वो बागी हैं जो दिल हथेली पर लेकर चलते हैं। तुम ला गिराओ हम अपनी बेरुखी की बिजलियां, हम वो शिकार, हम वो आशिक हैं जो हर पल जो हर हाल में संभलते हैं। गाना बहुत अच्छा लगा। ओके जी, ठंडा मिल रहा है ना, ये फीडबैक सुनते हैं।
1: धन्यवाद अमन सर, आपने हमारी फरमाइश का गीत सुनवाया, बहुत बहुत शुक्रिया। और गीत सुनकर सभी श्रोताओं ने फीडबैक दिए, उन सबको भी हम धन्यवाद देते हैं। मैं निंदरा महाराष्ट्र से अशोक देशमुख।
0: ओके, अगली जो डिमांड है हमारी शाहक हुसैन जी की है और सुनवाते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुंता लिखते हैं कि मतलब कुंता बेनी जी लिखते हैं कि ये सभी दोस्तों की मिली जुली फरमाइश बहुत ही शानदार लगा है, थैंक यू सो मच। तो इसहाक हुसैन जी एक बार ही किया है यानी कि प्यार किया है, तो वो पता नहीं, मैं सुनवाता हूँ आपके पसंद को इस गाने को, एंजॉय कीजिए, एक बार ही किया है।

सुनने को मिला आपका गाना, गाने के साथ साथ वो गुनगुनाना बहुत अच्छा लगता है वो। थैंक यू सो मच। और सभी रेडियो हॉट टॉक को सुनने वाले मेरे प्यारे प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

0: खान सुना
1: रेडियो बाना जो बनाते दीवाना
0: जी बेहद पसंद है।

0: वेलकम बैक। और यहाँ पे साहिब हुसैन जी लिखते हैं कि लव यू सॉन्ग, ओह मजा आ गया गाने सुनकर। और जितेंद्र जी लिखते हैं कि शानदार पसंद है, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे बीटू कुमार लिखते हैं कि अमन जी मेरा नहीं, देखिए बात है कि अगर एक दिन किसी का गाना नहीं प्ले होता है, क्योंकि गाने की डिमांड बहुत ज्यादा होती है और हर किसी गाने को यहाँ पे प्ले करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मैं कोशिश करता हूँ कि जो लोग मतलब यानी कि जिनका हर दिन प्ले नहीं होता है, कम से कम उनका तो एक दिन प्ले हो जाए जरूर, क्योंकि ये लोग तो हमेशा आते नहीं है। इसलिए अगर आपका डेली कभी कभी ना यानी प्ले होता है, एक दिन नहीं प्ले होगा तो क्या हो गया, उसमें कोई गुस्सा वाली तो बात नहीं होनी चाहिए। ओके, दत्ता करण जी लिखते हैं कि नहीं, हो सकता है कि नहीं भी आए। और गजानंद जी लिखते हैं कि जाने तमन्ना वाला गाना मुझे बहुत ही पसंद आया, थैंक यू सो मच। कुंता बेनी लिखते हैं कि ऑसम सॉन्ग, थैंक यू सो मच फॉर दिस सॉन्ग। ओके जी, और अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि क्या सर फीडबैक लीजिए, कौन सा फीडबैक, ये वाला आपका
1: जरा सी बारिश क्या हुई,
0: हाँ ये तो आपका हो चुका है, आपका फीडबैक ऑलरेडी हो चुका है। राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि बहुत ही शानदार पसंद है, दिल खुश कर दिया, थैंक यू सो मच। और शिल्पा बेन लिखते हैं कि थैंक यू सो मच मेरा भी गाना प्ले करने के लिए। इसी बात पर अगला जो मैं गाना प्ले करने वाला हूँ, वैसे आज के सभी गाने लाजवाब लाजवाब लाजवाब हैं और सभी के लिए मतलब सभी गाने पसंद करना और इन प्ले करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, लेकिन एक दो गाने में प्ले करूंगा। फिलहाल चलिए भाई बिट्टू जी आपके गाने को मैं प्ले कर रहा हूँ, एंजॉय कीजिए। और थोड़ा थोड़ा गाना प्ले करूंगा क्योंकि मुझे 10 बजे जाना है बिल्कुल।

0: गया हूँ,
1: बिल्कुल आ गया हूँ, और इसीलिए यहाँ पे अनारकली डिस्को जा रही है। और इसके इस गाने को लेकर आए हुए हीरामन खिराड़े जी। तो हीरामन जी क्या कहते हैं, सुन लेते हैं इनके ऑडियो को भी।
2: नमस्कार आरजे अमन सर जी, गुड इवनिंग। मैं हीरामन खिराड़े वाशिम महाराष्ट्र से। आज मुझे गीत सुनना है म्यूजिक मिक्स मसाला में हाउसफुल 2 का, और गीत के बोल है अनारकली डिस्को जली। ये गीत सुनना है सर। और इस गीत में पहले तो आरजे अमन सर जी आप शामिल है।
1: थैंक यू। आपकी आवाज में बहुत घगड़ाहट है, गाना एंजॉय कीजिए।

ओके, नाम आ चुका है मेरे पास अमीना खान जी का। अमीना खान जी, बहुत बहुत आपको बधाई हो, आज की विनर बनी है टॉप लीडर में और आपका नंबर 1 भी है। कोई बात नहीं, चलिए, और लकी ड्रॉ में भी आपका नाम आ गया है। बहुत बहुत बधाई हो आपको।

0: बिल्कुल नाना हो गया दीवाना। वैसे फीडबैक भी बहुत सारा आ चुका है यहाँ पे, नाई जी लिखते हैं सभी गाने ब्यूटीफुल चल रहे हैं, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे बिट्टू कुमार लिखते हैं बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी मेरा भी गाना प्ले करने के लिए। और अशोक भाई बेंच लिखते हैं कि बहुत अच्छा लगा सभी दोस्तों का गाना, बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे राधा कृष्ण बोल रहे थे बहुत ही शानदार लाजवाब फरमाइश। साथ ही साथ कुत्ता बिल्ली लिखते हैं कि ये इस गाने को सुनकर तो मजा आ गया शानदार। अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि अमीन के शौकीन ज्यादा तो नहीं लेकिन ये तेरे ख्वाब ना देखूं तो गुजारा नहीं होता। अच्छा जी, और दत्तकरण जी लिखते हैं बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी गाना प्ले करने के लिए। और गजानंद जी लिखते हैं कि अदानिया अमन सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मेरा गाना प्ले करने के लिए। इसी बात पर कॉल लगाते हैं अमीना खान जी को।
1: राम की बातें राम ही जाने।
0: अमीना खान जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत वेलकम है आपका। आज के विनर बनने के लिए बहुत बहुत आपको बधाई हो। वालेकुम अस्सलाम, और कैसी हैं आप?
2: बहुत बहुत शुक्रिया जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं?
0: जी मैं बहुत ही अच्छा हूँ, आपकी दुआएं हैं
2: जी। दुआएं तो सबकी आप लेती रहते हैं।
0: थैंक यू सो मच, बस मुझे सबकी दुआएं ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आप सबका प्यार, आप सबकी दुआएं, बस मुझे इतना ही चाहिए, वही मेरे लिए बहुत काफी है।
2: वो तो ढेर सारी लेते रहते हैं आप।
0: थैंक यू सो मच। तो आज विनर बनी है, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई हो। और आज आप ये बताइए क्या सुनना पसंद करेंगी?
2: शुक्रिया, मैं शाहरुख खान वो सॉरी जब तक है जान मूवी का सॉन्ग इश्क शवा मुश्क शवा।
0: अच्छा, इश्क शवा मुश्क शवा, ठीक है मैं इस गाने को जरूर सुनूंगा। और कुछ कहना चाहेंगे आप?
2: बस आज का प्रोग्राम तो काबिल तारीफ है, आए लोग हैं हम आपके।
0: ओह थैंक यू सो मच। और मेरे कुछ इन शो के बारे में कुछ कुछ अपना सुझाव कुछ देना चाहेंगे?
2: बस जब से मतलब सुना है सोच रहे हैं कि आज नहीं सुनेंगे लेकिन वो आज नहीं आता।
0: ओह माय गॉड, और ऐसा रहे कि ये आज कभी नहीं आया, आज नहीं सुना।
2: हाँ वो लगता है आप ऐसे ही सबके दिलों को जो जीते हुए हैं ऐसे ही नहीं।
0: ओके ओके, थैंक यू सो मच। चलिए एंजॉय कीजिए अपने गाने को, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू, शुक्रिया।

और बहुत से दोस्तों के गाने छूट रहे हैं। आई एम सॉरी, क्योंकि मैं सभी का नाम अगर आप इन्हें कहेंगे कि किन किन किन का छूट रहा है तो मैं आपको बता दूं, यानी राहुल पासी जी हैं और संजय पटेल जी हैं, रवि मोहाड़े जी हैं, कपूर जी हैं, जितेंद्र जी हैं और प्रमोद यानी कि तायड़े जी हैं, मोहम्मद जलील जी हैं, रविंदर जी हैं, अब्दुल जब्बार अंसारी जी हैं, मंगेश देशमुख जी हैं, युवेंद्र प्रजापति जी हैं, आर के राजन जी हैं, अशोक पाल जी हैं, राधा कृष्ण गोप जी हैं और गोविंदा खंडाते जी हैं। मतलब किन किन का नाम, बहुत से दोस्तों की फरमाइश से इधर छूट रहे हैं जो हमारे सॉन्ग लिस्ट में दिख रहा है, मैंने उनका नाम बताया है। और मैं बता दूं कि मेरे पास बहुत सारे यानी लिस्ट में जो लोग इन्हें मैसेज करते हैं उसमें भी बहुत सारे दोस्तों के नाम छूट रहे हैं, तो सभी के लिए मतलब सॉरी कहना चाहूंगा। लेकिन आप सब दोस्तों के लिए एक मैं अपनी पसंद का गाना मैं प्ले करके जा रहा हूँ, उम्मीद करते हैं कि मेरी पसंद आपको पसंद आए, तो एंजॉय कीजिए इस गाने को सभी के लिए।

0: ख्यालों में जय हंगामा, कहां भाग रही तू मैं?
1: या अल्लाह,
0: काले से डर गए क्या?
2: हमें काले हैं।

मिला रही क्या? पीछे नहीं हटूंगा मैं, मिला को रख डालूंगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मेरी मदद कर अल्लाह, मैं पुत्री को छोड़ूंगा नहीं मैं अल्लाह।

इधर है नहीं।

घास में दाल को फूंक डालो ना, नीचे से माचिस की कांदी।

0: तुम लोग हंस क्यों रहे हो?
1: हंस नहीं रहे दोस्त, रो रहे हैं तुम्हारी अकल पे और हम सबकी बेखूफी पर। एक दीवाने ने ख्वाब देखा जंगल में और उसकी तस्दीक के लिए हम सब दीवाने तुम्हारे दरबार में पहुंच गए।
0: ये दीवानगी नहीं, हकीकत है। मैंने अपनी आंखों से उन दो इंसानों को सांप बनते हुए देखा है। विजय, पहले तो तुम्हारी सिर्फ दिमाग पे शक था, अब मालूम होता है कि तुम्हारी आंखें भी जा रही हैं।
2: हम ये कैसे मान सकते हैं यार कि एक सांप जब चाहे इंसान का रूप धारण कर ले और जब जी में आए फिर से सांप बन जाए।
3: मैं तो कहता हूँ ये तुम्हारे दिमाग का फतूर है और कुछ नहीं। मुझे तो सोचकर भी हंसी आती है यार।
0: चंद साल पहले तुम्हारे जैसे लोग चांद पर जाने वालों पर ऐसे ही ऐसा करते थे।
4: ओ फिलोसोफर साहब, आप अपनी फिलॉसफी से सच को झूठ में नहीं बदल सकते।
0: अरे भाई, ये इच्छाधारी सांप सदियों से है और जो बात सदियों से सच है वो आज भी सच है, समझे?

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 12 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: गोली किसे चलाई?
1: मैंने।
0: क्यों?
1: अगर मैं गोली नहीं चलाता तो नाग उस लड़की को डस लेता।
0: वो लड़की नहीं है बेवकूफ, वो नागिन है, और जिस नाग पर तुमने गोली चलाई है उसे मैं इंसान के रूप में देख चुका हूँ, उससे बातें कर चुका हूँ।
2: लेकिन अब क्या करूँ, पिस्तौल से निकली हुई गोली वापस तो नहीं आ सकती?
0: जिस तरह पिस्तौल की गोली वापस नहीं आ सकती, इसी तरह नागिन का बदला कभी टल नहीं सकता। कहते हैं मरने वाले नाग की आंख में मारने वाले की तस्वीर रह जाती है, और नागिन उस वक्त तक चैन से नहीं बैठती जब तक वो खून का बदला ना चुका ले।
3: तो अब क्या किया जाए?
0: किरण के बचने की सिर्फ एक ही सूरत है, हमें फौरन उस नाग को ढूंढ के जमीन में दबा देना चाहिए ताकि वो नागिन अपने नाग की आंख में इसकी तस्वीर ना देख सके।
3: लेट्स सर्च।
0: हाँ चलो।

0: मुझे कुछ कहना है,
1: मुझे भी कुछ कहना है,
0: मुझे कुछ कहना है,
1: मुझे भी कुछ कहना है।
0: पहले तुम,
1: पहले तुम,
0: पहले तुम,
1: पहले तुम,
0: पहले तुम,
1: तुम,
0: तुम,
1: तुम,
0: तुम,
1: तुम,
0: तुम,
1: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
0: अच्छा मैं कहती हूँ

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 1 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 2 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: क्या है चिटचोर?
1: 1 2 3 4
0: क्या है चिटचोर?
1: यू सिंग लाइक किशोर बट शादी का दे
0: ओ यस सितंबर 8
1: वेरी लेट
0: डार्लिंग वेट

0: तू है बुलबुल
1: सच है बिल्कुल यू आर वंडरफुल
0: लग जा गले दुनिया चले छम छम छम छम छ छम छ छम ए गण हम तुम पे दिल निसार करता है रोज रोज रोज ही तुमको प्यार करता है रोज

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 4 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

चूहे को पड़ गए जान के लाले, बोला मुझको कोई बचा ले। चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा, आगे चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा, आगे चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा।

जिंदगी बन गई भोली, कुंडी खोली हंस के बोली, जाने तमन्ना अंदर आओ, पहले तो कुछ खाओ आओ, फिर बिस्तर पे होंगी बातें, बड़े प्यार से कटेंगी रातें। शौहर चौंका, भूले से मैं, ये किसके घर आ गया यार, मेरी बीवी मुझे कभी भी दे नहीं सकती इतना प्यार।

माफ कीजिए, मेरे साथ जरा इंसाफ कीजिए, मुझको अपने घर जाना है वरना बीवी फिर मारेगी। उस दिन बीवी होश में आई, बंद हो गई सारी लड़ाई, नफरत हारी उल्फत जीती, लुटी खुशी फिर लौट के आई। अरे नफरत हारी उल्फत जीती लुटी खुशी फिर लौट के आई। आई रे आई रे आई रे आई रे आई, पीना छूट गया पीना छूट गया, बीवी ने इतना दिया प्यार, पीना छूट गया।

0: नहीं बताऊंगी।
1: तुझे दिल की बात बता दूं?
0: नहीं नहीं नहीं नहीं